0: रिलैक्स।
1: तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

0: If you've ever set a ringtone to Kya Mujhe Pyar Hai, you're in the right place. This is the Big Millennial Weekender, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो?
2: बोले तो मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की झप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
0: Stars, the part of the big weekender. Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Agenda. The biggest Bollywood hits non-stop.
1: Non-stop hits.
0: Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
3: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
2: अलराज कहाँ है अलराज?
3: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर
4: अलराज है। शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
2: चलो चले अलराज।
0: Big 106.2.

0: 92.2 The Beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।

0: करने के बाद पहली बार सिड के साथ सैटरडे मॉर्निंग आप लोगों को एकदम इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आई हूँ. हाय सिड.
1: हाय, हाउ यू डूइंग शिरीन?
0: आई एम डूइंग अमेजिंग, एज सो आर यू. आई मीन आई कैन सी दैट यू आर डूइंग अमेजिंग. एंड सिड, यू नो आपकी आवाज जो है ना, इट्स लाइक सो डीप. एंड कुछ करते हो क्या, कुछ एक्स्ट्रा करते हो इसके लिए?
1: हाँ, नहीं
0: नहीं, मुझे लगता है करते हैं लेकिन मुझे बताना नहीं.
1: नहीं नहीं, इन ऑल ऑनेस्टली देयर इज नथिंग दैट यू कैन डू. जितनी भी आप कोशिश करो वो उल्टी पड़ती है.
0: आई नो.
1: सो इन फैक्ट द मोर यू ट्राई टू डू, या द वर्स your voice becomes.
0: True. I mean, it's just be natural, hai na? Yeah, but I must say, I've always heard you on the radio and I've always felt like, wow, ye bhari bhukam awaaz kiski hai.
1: thank you so much. Welcome to, kaun kisko welcome kar raha hai? Am I going to welcome you or you going to welcome me?
0: To aap mujhe big mein welcome kar do, because main Dabur Honditus ki, kya aap gala, aapka gala tayar hai ki winner hoon?
1: Right.
0: Theek hai. And main aapko welcome karti hoon apne show par, jo ki hai The Big Millennial Weekend.
1: So what's the show all about? It's about the millennials.
0: So yes, it's about millennials, about the millennial times, about Bollywood, about music. I mean, I'll try to incorporate as much Bollywood as possible. ठीक है, तो हर Saturday को मैं कोई ना कोई मेरे साथ रहता है और I'm always talking about certain things which can be hypothesis. थोड़ी सी अपने डेलुलू जिंदगी में भी जीती हूँ मैं.
1: Because डेलुलू is the only सलूलू.
0: Of course, that's only सलूलू. All right. तो आज भी हम ऐसे ही एक टॉपिक पे बात करेंगे. We are talking about directors who have had great starts, sometimes not so great starts, but have been able to make it really, really big in Bollywood. तो आज हम इन चीजों के बारे में बात करेंगे. So before we start, let's go and listen to the first song of the morning. Big.

0: द बिग मिलेनियल वीकेंडर, दिस इज शिरन ऑन बिग 106.2. मेरे साथ हैं सिड, और आज मैं आपके जो सैटरडे को जो है लाजवाब बनाने वाली हूँ, बिकॉज आई हैव गॉट सम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स. ऑलराइट, तो जैसे मैंने यू नो इस गाने से पहले जैसे मैं बोल रही थी कि वी शुड थिंक अबाउट ऑल दीज डायरेक्टर्स हु स्टार्टेड ऑफ इन बॉलीवुड. कभी कभी हिट हो जाता है, कभी मिस हो जाता है, लेकिन उसके बाद उनकी जर्नी इतनी ज्यादा आगे बढ़ी, अभी हम देख रहे हैं वो बड़े बड़े डायरेक्टर्स बन गए हैं. राइट, सो फर्स्टली आई लाइक टू टॉक अबाउट इम्तियाज अली. सो सिड, डू यू नो इम्तियाज अली की पहली मूवी वो सोचा ना था. आई एम श्योर यू नो अबाउट इट, राइट?
1: प्रोड्यूस्ड बाय धर्मेंद्र.
0: या एग्जैक्टली, एंड आई थिंक अभय देओल एंड आयशा टाकिया डिड अ फैंटास्टिक जॉब. बहुत ही फ्रेश सी जोड़ी थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जोड़ी थी, एंड इट वाज अ लव स्टोरी, वेरी वेरी हल्की फुल्की सी, बहुत अच्छा था वो.
1: या एंड जब वी मेट से पहले, यस, लाइक अ वेरी सिमिलर काइंड ऑफ अ जॉनर, वेरी ब्रीजी,
0: एग्जैक्टली,
1: रोमांटिक फिल्म जिसमें यू नो डायलॉग्स डोंट सीम वेरी प्रिपेयर्ड.
0: हां, बहुत ही इंप्रॉम्प्टू सा लगता है, एवरीथिंग इज लाइक वेरी, वी कैन रिलेट वेरी इजीली. राइट, सो सोचा ना था इज वन फैंटास्टिक मूवी व्हिच रियली डिड नॉट बिकम दैट बिग अ हिट, बट आई थिंक इट शुड हैव बीन अ रियली गुड वन, है ना. लेकिन जो कोई देखता है उस मूवी को बोलते हैं कि मूवी तो बहुत अच्छी है.
1: राइट, बट इट वाज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर इम्तियाज अली, प्रोड्यूस्ड बाय धर्मेंद्र, लाइक वी सेड, एंड फॉर अभय देओल के लिए भी उनका जो लॉन्च था उसके बाद ही गॉट काइंड ऑफ यू नो रिकॉग्नाइज्ड बाय पीपल लाइक अनुराग कश्यप, फरहान अख्तर एंड ऑल दीस.
0: एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सो इफ एट ऑल यू ऑल हैव नॉट वॉच सोचा ना था, डू वॉच. हमें बिग के जो इंस्टा पेज पे टैग कीजिएगा, बताइएगा आपको मूवी कैसी लगी. सो लेट्स go on and listen to the next song.

0: The Big Millennial Weekender, this is Shirin with you on Big 106.2. मेरे साथ सिट बैठे हुए हैं एंड मैं उनको अपना ज्ञान दे रही हूँ, वो सुन रहे हैं, मुझे जवाब दे रहे हैं. तो ब्रेक से जाने गाना सुनने से पहले मैंने आपको बताया था द मूवी सोचाना था. इम्तियाज अली की फर्स्ट मूवी थी, लोगों को बहुत अच्छी लगी थी. ऐसे ही एक बहुत ही बड़े डायरेक्टर जो कि अभी बन गए हैं, लेकिन शुरुआत उन्होंने की थी मूवी खामोशी से, संजय लीला भंसाली. यू नो व्हेन यू थिंक अबाउट संजय लीला भंसाली, यू ऑलवेज थिंक अबाउट बड़े बड़े सेट्स, बहुत सारा यू नो एकदम चमक धमक, कलर एंड ब्लू एंड ब्लैक एंड रेड एंड एवरीथिंग. लेकिन खामोशी वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट. आई थिंक इट वॉज लाइक इट वॉज नॉट सो मेजेस्टिक, बट एट द सेम टाइम आई थिंक ही हैड एक्चुअली चोजन सच फैबुलस एक्टर्स. जो मूवी थी, जो उसमें जो नुआंसेस थे, जो जरूरत थी उसकी, इट वॉज अमेजिंग. व्हाट डू यू थिंक सिड?
1: आई मीन आई थिंक बिफोर बजरंगी भाईजान, हाँ जी, इफ देयर वाज वन फिल्म जिसमें सलमान खान की एक्टिंग एबिलिटीज को आप अप्रिशिएट कर सकते हो, आई थिंक इट वॉज खामोशी. एंड देन ऑफ कोर्स मनीषा कोइराला, द साउंड ट्रैक वॉज ऑल्सो अमेजिंग. जतिन ललित आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट underappreciated soundtrack.
0: हाँ, underappreciated soundtrack. And मुझे लगता है कि except for maybe बाहों के दरमियाँ and आज मैं ऊपर, बाकी के गाने इतने नहीं you know hit हुए. But मुझे लगता है उसमें एक गाना है, मौसम के सरगम कुसुन, that is such a beautiful track. If you guys have not heard the songs or if you've not watched the movie, मुझे लगता है आपको जाना चाहिए, देखना चाहिए, revisit करना चाहिए, ताकि आपको समझ में आए कि संजय लीला भंसाली कहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी और कहाँ पहुँचे हैं. Let's go on and check out the next song.

0: बिग मिलेनियल वीकेंडर, दिस इज मी शिरिन ऑन बिग 106.2। मेरे साथ सिड हुए हैं यहाँ पे और मुझे लगता है कि मैं जिन मूवीज़ की बात कर रही हूँ, सिड जो है ऐसे सिर हिला के नॉड करके बोल रहे हैं, अरे हाँ यार सही बात है ना। लाइक आई थिंक नेक्स्ट मूवी जब मैं बोलूँगी, सिर्फ आप ही नहीं हमारे लिसनर्स भी नॉड करेंगे अपने कार्स में बैठ के, जहाँ से भी सुन रहे हैं वहाँ बैठ के। एंड दैट इज़ कुछ कुछ होता है, करण जौहर की पहली मूवी। लगता ही नहीं कि वो पहली मूवी। ओके, नाउ यू नो ऑल दोज पीपल हु हैव अ प्रॉब्लम विद that movie, a problem with a mother writing letters to an 8-year-old telling about her father's love story and everything. जिनको भी problem है यार, तुम कुछ जो करना कर लो, लेकिन मुझे movie बहुत अच्छी लगती है and I'm sure millennials बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको movie बहुत अच्छी लगती है. What about you, sir? Do you find problems in that movie now?
1: I mean, it is one of those films that doesn't age very well. Let's be honest. But coming back to Karan Johar, I think he got a very good grounding.
0: Yes.
1: क्योंकि DDLJ में he was playing Shahrukh Khan's friend.
0: Exactly.
1: And then he got like his proper, kya kehte na, he got an internship under Aditya Chopra, so he kind of started on the right note, although he was, I don't think he was a part of the direction team, or was he, but he got like hands-on experience out there.
0: Yes.
1: And like, so he was quite ready when it came to making his own movie.
0: Exactly. Right? मुझे लगता है कुछ कुछ होता है कि गाने आज भी इतने popular हैं, soundtrack तो amazing था ही, movie तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, and I don't think there's anybody who has not watched कुछ कुछ होता है out there, but if you have not watched it, please do revisit it, or rather visit it, all right? So let's go and listen to the next song.

0: Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लड़ेगा?
1: यूं ही यही 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पांच? पांच।
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
4: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
0: Big. Big 106.2.

0: The part of the big weekender. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर। शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
3: जितना भी ट्राई करोगी लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही।
4: बिल्कुल नहीं छूटेगा, क्योंकि होमवर्क भी मेरा, रिसर्च भी मेरा, बट प्लान होगा आपका। फ्रॉम कैफेज टू स्ट्रीट फूड, बजट फाइंड्स टू वायरल स्पॉट्स, ट्यून इन टू द बिग रेकमेंड्स एवरी संडे 3 to 6 PM। क्योंकि अगर जोरा ने बेस्ट कह दिया तो बस कह दिया।
0: Catch the big recommends every Sunday from 3 to 6 p.m. with Zora. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Less hustle, more yaadein. That's how weekends should be. This is the Big Millennial Weekender. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.

0: बिग मिलेनियल वीकेंडर, दिस इज मी शिरन ऑन बिग 106.2 और मेरे साथ सिड है यहाँ पर. सिड को मैं जो है बहुत सारा ज्ञान दे रही हूँ, सिड जो है मेरा सारा ज्ञान ले रहे हैं. आई होप ही इज एंजॉयिंग, राइट सिड मेरे साथ.
1: नो, इट्स अ ग्रेट कलेक्शन ऑफ द टॉपिक इज आल्सो क्वाइट गुड.
0: ऑलराइट, तो सिंस उनको टॉपिक भी बहुत अच्छा लगा है, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट मूवी दैट यू नो द डायरेक्टर स्टार्टेड विद और अभी जहाँ वो हैं, जिस मुकाम पे हैं, आई मीन इट्स रियली अमेजिंग. एंड दैट इज मुन्ना भाई MBBS,
1: राजकुमार हिरानी.
0: यस, राजकुमार हिरानी, मुन्ना भाई MBBS. आई थिंक इट वॉज वन ऑफ अ काइंड मूवी. इसमें बहुत सारी चीजें नई थी, एवरीथिंग वॉज वेरी नॉवल, यू नो, एंड इट्स सच अ फील गुड मूवी. आज भी तुम देखोगे, यू विल रियली, यू नो, यू विल टियर अप एट टाइम्स, यू विल फील गुड एट टाइम्स, यू विल फील लाइक गिविंग दैट जादू की झप्पी टू पीपल, यू नो, ऑल दोस थिंग्स आर देयर. व्हाट इज योर इमोशन विद मुन्ना भाई MBBS?
1: टोटली, आई कंप्लीटली एग्री विद यू. इट्स वन ऑफ दोस फिल्म्स दैट वर सो फ्रेश, सो ब्रीजी व्हेन इट केम आउट, के मतलब एक गैंगस्टर को लेकर आप एक कॉमेडी फिल्म बना सकते हो.
0: बिकॉज
1: इट वॉज अराउंड द सेम टाइम जब ये सारी रामगोपाल वर्मा की फिल्में आ रही थी. सो गैंगस्टर मेंट यू नो डार्क एट दैट पॉइंट, बट देन दिस इज सच अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर एंड देन काइंड ऑफ डिफाइंड राजकुमार हिरानीज स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग, जो कि लेटेस्ट अभी दिखा इन प्रीतम एंड पेड्रो,
0: व्हिच
1: आल्सो आई स्ट्रांगली रेकमेंड.
0: यस, एग्जैक्टली. एंड मुझे लगता है कि ये जो मतलब गैंगस्टर वाला जो वाइब संजय दत्त कैरी कर रहे थे फ्रॉम हिज मूवी वास्तव एंड ऑल, ही रियली हैड दैट वाइब. सो इट वॉज रियली अमेजिंग टू सी हिम इन अ कॉमिकल रोल. ऑफ कोर्स ऑल द अदर एक्टर्स दैट वर इन्वॉल्व्ड वाज अमेजिंग. सो मुन्ना भाई MBBS अभी भी अगर आपने सिर्फ सुना है लेकिन देखा नहीं है, तो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू गो एंड एंजॉय योर वीकेंड विद मुन्ना भाई MBBS. लेट्स गो अहेड एंड लिसन टू द नेक्स्ट सॉन्ग.

0: द बिग मिलेनियल वीकेंडर पे मैं हूँ शिरिन और बिग 106.2 पर जो है आज की सैटरडे का जो ये शो है ये इसका ऑलमोस्ट यू नो एंडिंग की तरफ हम आ चुके हैं. एंड सिड मुझे लगता है मुझे जो लास्ट मूवी जिसके बारे में मुझे बात करनी है उस मूवी के टाइटल में आपका नाम भी आता है.
1: Wake up, Sid.
0: Yes. Wow. Yeah, आप सबको सुबह सुबह उठाते हो और यहाँ मैं वेकअप सिड की बात करूँ तो वेकअप सिड आयान मुखर्जी की पहली मूवी थी. एंड आई थिंक रियली मुझे लगता है वो मूवी इतनी नहीं चली थी. इट वॉज नॉट रियली दैट सक्सेसफुल बट रणबीर कपूर की एक्टिंग को बहुत ज्यादा मतलब देखा गया था. एंड ऑब्वियसली कोंकणा सेन शर्मा की भी जो है शी इज लाइक ऑलवेज शी इज लेजेंडरी.
1: एंड आई थिंक द फिल्म जो की एक सिटी का जो जो एसेंस है वो कैप्चर करने वाली जो बात आई थिंक इट कैप्चर्ड मुंबई रियली वेल
0: वेरी वेल.
1: इट वॉज लाइक a film that was you know youth jo feel kar raha hai.
0: Yeah,
1: such a difficult film. Yeah,
0: true. And you know, and the thing about the age difference between the characters,
1: right.
0: And a very very different kind of a jodi, Ranbir Kapoor and Konkana Sen Sharma. Can you even believe? I mean, it's such a different kind of a jodi. Wo sab cheeze bahut acceptable thi but still like at that time it was really not that big of a hit. Lekin it was a worth watching movie. Bahut hi achhi movie hai. Gaane bahut acche hain. Gaane to aajkal bhi chalte hain.
1: I think yehi wo film thi jisse Ranbir Kapoor ki acting abilities.
0: Yes.
1: Started being celebrated.
0: Yeah,
1: right?
0: It was for good for him, yeah. But as a movie, it was not really much talked about. So everybody, इस weekend को जो है आप लोग ये सारी movies जो देखिए और हमारे जो है Big के Insta page पे जो कि है 106.2 Big FM उस पे जो है बताइए हमें कि आपको movie suggestions कैसी लगी. And on that note, this is me signing off for this Saturday. अगले Saturday को फिर मिलेंगे. Thank you, Sid, so much for being with me here. तो चलो देखते हैं अगला गाना कौन सा है.

मुंबई। सुना था यहाँ आदमी पूरी जिंदगी अपनी किस्मत स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक लाने में निकाल देता है, पर ढाई घंटे में मेरी किस्मत ऐसे स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक पर आ जाएगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। सजा मजा बन जाएगी, ये भी कभी सोचा नहीं था। लास्ट लोकल क्या छुट्टी, साला किस्मत पटरी पर आ गई।

0: 92.2 The Beat of Bollywood.
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लौटेगा?
1: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पांच? पांच।
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2

0: Big 106.2. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: जितना भी ट्राई करोगी लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही।
2: बिल्कुल नहीं छूटेगा, क्योंकि होमवर्क भी मेरा, रिसर्च भी मेरा, बट प्लान होगा आपका। फ्रॉम कैफेज टू स्ट्रीट फूड, बजट फाइंड्स टू वायरल स्पॉट्स, ट्यून इन टू द बिग रेकमेंड्स एवरी संडे 3 to 6 PM, क्योंकि अगर जोरा ने बेस्ट कह दिया तो बस कह दिया।
0: Catch the big recommends every Sunday from 3 to 6 p.m. with Zora. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big 106.2.

0: 38 Anuv Jain ki awaaz mein from Coke Studio Bharat. Playing you the top 40 biggest hits of the week. Mansi, this is the big Bollywood countdown. Arz kiya hai, itna popular hai, even almost after a year, ye gana release hua tha 2025 mein as a part of Coke Studio Bharat Season 3. And this was created in collaboration with the electronic music duo Lost Stories. And the track blends traditional poetic elements with soft indie production. The song has achieved massive commercial success, making history as the first ever Coke Studio track to reach number one on the Spotify India charts and has crossed over 400 million streams worldwide. I think that is Anuv Jain. कमाल गाने ये लिखते हैं, कमाल गाने ये बनाते हैं. फिलहाल मूविंग ऑन टू नंबर 37, अ मूवी दैट आई एब्सोल्युटली लव्ड एंड आई एम प्लानिंग टू रीवॉच फ्रॉम तू या मैं. आदर्श गौरव, शनाया कपूर, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट इन द मूवी. पीपल से कि ये कोरियन मूवी की रीमेक है, मैंने देखी नहीं है, मुझे ओरिजिनल मूवी लगी और बहुत अच्छी लगी. सो इट्स अवेलेबल ऑन OTT एंड इट इज अ ग्रेट वॉच. इसी के साथ वी गॉट बादशाह शार्वी यादव ऑन नंबर 36. Playing you the top 40 hits, keeping you company. I'm Mansi. This is the Big Bollywood Countdown.
1: The Big Bollywood Countdown. The part of the Big Weekend. Big 106.2. The beat of Bollywood. The Big Jill.
2: All my favorite music in one spot.
1: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by

0: ब्रांड न्यू एंट्री चार्ट्स में इस हफ्ते ऑन नंबर 35 वी've got गुरु रंधावा की आवाज साथ में गिल एंड गाना है फ्रॉम धमाल 4 मेकिंग अ लॉट ऑफ वेव्स ऑन सोशल मीडिया. इतनी सारी रील्स इस गाने पे मैंने ऑलरेडी रिक्रिएट लोगों को करते हुए देख लिया है. That it had to be a part of our charts. Right here playing you the top 40 biggest hits of the week. Mansi, this is the big Bollywood countdown. The high energy gana, upbeat party anthem of the year se kaha ja raha hai. From Dhamaal 4, jise bahut kamal reviews mil rahe. In fact, the movie is officially a commercial hit because worldwide 124 crores this movie ne kamali on the very first week of the release. And people... With families are thoroughly loving the movie, and of course the fans of the franchisee are embracing the nostalgia, the silly humor. In fact, agar aapne ye movie nahi dekhi hai, to I'm not going to give you any spoilers, but the movie officially ends with a teaser sequence that sets up the premise for a future Dhamaal 5. So there is going to be a Dhamaal 5 as well. Filhal yahan pe moving on number 34, Gen Z's ki tere naam is what I call this movie. Sayyara se
1: tum ho to sab acha hai.
0: जो हाल जेंजीज का सैयारा देख के हुआ था, आई थिंक समहाउ मिलेनियल्स का वो हाल तेरे इश्क में को देखने के बाद हुआ था. अ लॉट ऑफ पीपल डिड नॉट लाइक द मूवी बट आई लव्ड इट बिकॉज इट इज फ्रॉम द मेकर्स ऑफ रंजना एंड धनुष. आई थिंक ही इज फैंटास्टिक व्हेन इट कम्स टू दीज इंटेंस डीप हार्ट ब्रेक काइंड ऑफ रोल्स. एंड रहमान साहब का म्यूजिक भी कमाल ही है. इस हफ्ते ऑन नंबर 33 प्लेइंग यू द टॉप 40 हिट्स ऑफ द वीक ये है बिग बॉलीवुड काउंटडाउन ऑफ मानसी.
2: दिस इज द बिग बॉलीवुड काउंटडाउन
3: ऑल द म्यूजिक आई लव
2: द पार्ट ऑफ द बिग वीकेंड बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
4: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: The Big Bollywood Countdown. The part of the Big Weekend. Big 106.2. The Beat of Bollywood. Number 34.

0: number 31. That was Janabe Ali from War 2 playing you the top 40 biggest hits of the week. This is the Big Bollywood Countdown. Hope you're enjoying your weekend and hope you're enjoying the top 40 biggest hits of the week. Do not forget to follow us on socials and vote. क्या आपके हिसाब से इस हफ्ते नंबर वन गाना कौन सा होगा? 106.2 Big FM it is, keeping you company. I'm Mansi. Moving on to number 30, विशाल भरद्वाज की ओ रोमियो, जो बहुत से लोगों को समझ नहीं आई. आई थिंक दैट इज विशाल भरद्वाज. कई बार लोगों को उनकी मूवी समझ नहीं आती है, चाहे वो हैदर हो, मकबूल हो. जब दो तीन बार लोग देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि विशाल भरद्वाज करना क्या चाह रहे थे. शाहिद कपूर फैंटास्टिक इन द मूवी इज ऑलवेज. आई थिंक he's been with Vishal Bharadwaj for a while. Started off with Kameene, then Heather, and now O Romeo. So yeah, the movie is available on OTT, and I really like the movie. And एक चीज है दैट आई लुक फॉरवर्ड टू इन विशाल भरद्वाज की मूवी इज रेखा जी का गाना. रेखा भरद्वाज की आवाज इज लिटरली मैजिक. सो उन्हीं के आवाज में साथ में सुखविंदर सिंह. इसी के साथ वी हैव गॉट द वुमन हु इज रूलिंग सोशल मीडिया. हैशटैग जैस्मिन सैंडलेस इज ट्रेंडिंग बिकॉज शी इज गिविंग होप टू ऑल द सिंगल गर्ल्स दैट लव विल फाइंड अस. एंड आई होप व्हेन लव फाइंड्स अस इट्स जस्ट लाइक हाउ जैस्मिन फाउंड लव. On number 29 this week on the Big Bollywood Countdown.
1: Number 30.

0: आज से आदित्यधर ने बहुत ही स्टैंडर्ड और बार हाई सेट कर दिया है, चाहे वो धुरंधर द मूवी हो या फिर धुरंधर द मूवी का म्यूजिक। एवरी सिंगल सॉन्ग फ्रॉम द फ्रेंचाइजी इज सो वेल थॉट ऑफ। This week on 24, Arijit Singh and Shashwat Sachdev from Dhurandhar playing in the top 40 biggest hits of the week. Mansi with the big Bollywood countdown. Moving on to 23, we've got Huma Qureshi with Baby Do Die Do, jiske kamal reviews aa rahe. If you're into action thrillers, you must watch this movie. It's a female-led action thriller, Baby Do Die Do. Baby Kar Mar Kar, who is a killer and she is deaf and she's mute. Yes. Silently अपने टारगेट्स को किल करती है विद एन अम्ब्रेला। आई विल नॉट गिव यू एनी स्पॉयलर्स, बट हुमा कुरैशी इज फैंटास्टिक इन द मूवी। हुमा एंड उनके भाई साकिब ने इस मूवी को प्रोड्यूस भी किया है। मूवी अल्फा के साथ रिलीज हुई थी, बट थ्रू वर्ड ऑफ माउथ दिस मूवी इज डूइंग सो सो सो वेल। टॉकिंग अबाउट रिक्रिएटिंग सॉन्ग्स, बेबी डू डाई डू में शक्ति का ये गाना रिक्रिएट हुआ है। This week on 23, on number 22, again a thriller that I highly recommend. People say it's a copy of such Korean movie, but I have to say it is brilliantly done. Adarsh Gaurav and Shanaya Kapoor, Tu Ya Main, aapko Netflix pe mil jayegi, must watch. Coming up, gaana number 22, it's called Famous, right here on Big 106.2, keeping you company. I'm Mansi, this is the Big Bollywood Countdown.
1: The Big Bollywood Countdown. The part of the Big Weekend. Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: 3, 2, 1, and they're off. It's your Off DG's exclusive bundle offer. New wheels, big screens. Get a Geely car plus TCL 65-inch TV from 42,999 dirhams. Drive home your new M-Grand or City Ray today. Book now for just 4,999 at your Off DG. T&Cs apply.
1: The Big Chill.
3: All my favorite music in one spot.
1: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. The Big Bollywood Countdown. Big 106.2. The beat of Bollywood. Number 23.
4: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क़ की मोहब्बत को

कि दिल को खबर ना हो। जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: निरंजना घोष के बाद साथ में वेदांग रैना हु इज डेफिनेटली अ ग्रेट सिंगर एंड रहमान साहब का म्यूजिक इस हफ्ते ऑन नंबर 20 प्लेइंग इन द टॉप 40 बिगेस्ट हिट्स ऑफ द वीक. स्टे राइट हियर, दिस इज द बिग बॉलीवुड काउंटडाउन.
1: This is the Big Bollywood Countdown.
2: All the music I love.
1: The part of the Big Weekend. Big 106.2. The beat of Bollywood.
3: A circuit. अपने कार के एसी की वाट लग गई. एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा? बता ना.
4: टेंशन नहीं लेने का भाई. अलरास है ना?
3: अलरास बोले तो?
4: बोले तो. मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर. शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन. हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं.
3: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी. विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर.
1: The Big Bollywood Countdown. The part of the Big Weekend. Big 106.2. The beat of Bollywood. Number 20.

मिस्टर रहमान का मैजिक एंड आई मस्ट से शाश्वत सचदेव का भी मैजिक कमाल है. एवरी सिंगल सॉन्ग, चाहे वो धुरंधर वन से हो या पार्ट टू, इज सो वेल थॉट ऑफ एंड सो ब्यूटिफुली मेड. चाहे वो रिक्रिएटेड गाने हो, जस्ट लाइक दिस एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग कवाली, किसी ने सुना नहीं था, इसका ये वर्जन भी आएगा इस हफ्ते ऑन नंबर 15. Top 40 hits of the week. Stay right here. This is the Big Bollywood Countdown. I'm Mansi.

0: एवर अगर बॉलीवुड ने देखी है तो इसी मूवी में देखी है. इस हफ्ते ऑन नंबर 7, मूविंग ऑन टू नंबर 6. दिस इज द बिग बॉलीवुड काउंटडाउन, प्लेइंग यू द टॉप 40 बिगेस्ट हिट्स ऑफ द वीक. मैं हूं मानसी. नंबर 6 पे एक और गाना धुरंधर. फर्स्ट पार्ट से वी गॉट I think 2026 so far has given us the best recreated songs. On number 5 we've got Suna Suna Baba Suna Suna Baba Suna Suna Suna Hai Jawani To Ishq Hona Hai. Isi ke saath again recreated gana Dhamal se, Dhamal 4 se in fact.
1: Gulabi saadi ani lali lal lal
0: And a brand new entry, सीधा number 3 पर इस गाने ने तबाही मचा रखी है social media पे. Toxic, a fairy tale for grown-ups, release हो रही है finally after a lot of delay. August में ये movie release होगी. Beautiful cast, नयनतारा, कियारा अडवाणी, तारा सुतारिया and साथ में यश. बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी इस गाने के वीडियो को लेकर. आई वुड कॉल देम डबल स्टैंडर्ड्स. व्हाइल पीपल वर प्रेजिंग यश फॉर हिज लुक, दे वर नॉट वेरी हैप्पी विद कियारा अडवाणी जस्ट बिकॉज शी इज मैरिड. गाइस, देयर एक्टर्स डूइंग द जॉब. ब्रिलियंट गाना इस हफ्ते सीधा नंबर 3 पर.
2: दिस इज द बिग बॉलीवुड काउंटडाउन.
3: ऑल द म्यूजिक आई लव.
2: द पार्ट ऑफ द बिग वीकेंड. बिग 106.2. द बीट ऑफ बॉलीवुड.
4: This summer, there are surprises all across Dubai, waiting to be discovered. More offers, more experiences, more reasons to celebrate. With E&, the strategic partner of Dubai Summer Surprises, enjoy up to 70% off on devices and accessories from 2nd of July to the 30th of August. Learn more at www.e&.ae. T's and C's apply. E&, strategic partner of Dubai Summer Surprises. E&, go for more.
2: The Big Bollywood Countdown. The part of the Big Weekend. Big 106.2. The Beat of Bollywood. Number 6.

0: Countdown.
1: इस हफ्ते के 40 सबसे धमाकेदार हिट्स.
0: Countdown.
2: Here we go.
1: सिर्फ Big 106.2 Beat of Bollywood पर.

0: मैंने है ना फैसला किया है।
1: करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता।
0: मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बता दूं मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ।
2: Less scrolling, more streaming. Let Sid take control of your weekend watch list. This is The Big Binge, only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

0: You're listening to The Big Binge with Sid on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जाद, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
0: Stop searching. Start watching. Sid's got your weekend entertainment sorted on The Big Binge. Big 106.2, The Beat of Bollywood.

The Big Binge is back. Good evening. And इस हफ्ते हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट इक्का ऑन नेटफ्लिक्स. नेटफ्लिक्स को लग रहा था कि ये उनका तुर्क का इक्का होने वाला है, तो हर बार लगना ही चाहिए. सनी देओल का बिग ओटीटी कोर्टरूम थ्रिलर स्टारिंग अक्षय खन्ना एज वेल. और हाँ, ढाई किलो का हाथ इज बैक, बट इस बार वो लीगल फाइल्स को उठा रहे. इट डजंट नीड ढाई किलो का हाथ. इंस्टेड ऑफ उखाड़ोइंग अपरूटिंग हैंड पंप्स दिस टाइम, सनी देओल प्ले करते हैं अर्जुन मेहरा, रिस्पेक्टेड लॉयर हैं जिन्होंने कभी कोई केस लूज नहीं किया है. Lord, he is, that is why considered to be an ikka, and he gets pulled into defending a murder accused that he may not even believe in. Akshay Khanna is that murder accused, and opposite him, Akshay Khanna comes in with full menace. Honestly, he looks like what he looks like in the trailer. Rehman Dakeet Pro Max, मतलब उनकी जो ठुड्डी है वो छाती से चिपकी रहती है, फेविक्विक से निकलती नहीं है. अबे हर एक, इट्स ओके, यू फाउंड लाइक अ सक्सेस फॉर्मूला, बट हर एक फ्रेम में यू डोंट नीड टू बी रहमान डकैत ना. सो इट्स लाइक अ पैरेलल यूनिवर्स जहां पर तारा सिंह भी हैं, रहमान डकैत, एंड दे बिकम तारा सिंह हैज बिकम अ लॉयर. कोर्टरूम ड्रामा है, मॉरल डिलेमा क्वाइट स्ट्रॉन्ग, स्टार पावर, शाउटिंग, साइलेंस एंड अ लॉट ऑफ ऑब्जेक्शन योर ऑनर वाला एनर्जी. मोर अबाउट इक्का, the film on Netflix that everybody is talking about coming up, what are the good things, bad things, and finally the verdict whether you should stream it or skip it, according to me, coming up right here on The Big Binge with me, Sid. Saki.

It's a Saturday evening, यानी it's time for the big binge. और आज हम लोग बात कर रहे हैं about इक्का, Netflix की वो फिल्म स्टारिंग सनी देओल, अक्षय खन्ना. It's time to talk about some good things. And trust me, I had to work really hard to find some good things about this film. The best thing is the face-off value, right? Sunny Deol versus Akshay Khanna. साथ मिलकर automatically फिल्म को एक वजन तो मिलता है. Because दोनों actors, they know how to hold a scene without, you know, trying too hard. कुछ होते हैं ना लोग जिनको camera absolutely loves them. ये क्लीशे पे बिल्कुल खड़े उतरते हैं. एक तो सनी देओल और दूसरे अक्षय खन्ना. सनी ब्रिंग्स दैट ओल्ड स्कूल इंटेंसिटी. Now, the thing is that it does get a bit too old school at certain points, but I promise myself to give you the good things. सबसे पहले, restrained है in some places which would be difficult for him, explosive in others which comes naturally to him, whereas Akshay has got that calm, dangerous unpredictability that makes you keep watching. And the courtroom setup also gives that film like a strong hook, right? What happens when a lawyer is forced to defend someone जिसको वो personally suspect करते हैं? So, ये जो मॉरल डिलेमा वाली जो बात है, दैट यू नो काइंड ऑफ थिंक के ये तो होता ही होगा लॉयर्स के साथ, और जब होता है तो हाउ डू दे एक्चुअली डील विद इट. सो द मॉरल कॉन्फ्लिक्ट इज एक्चुअली द फिल्म स्ट्रॉन्गेस्ट आइडिया, बट दैट्स द थिंग, वो आइडिया लेवल पे ही रह जाता है. एंड इफ यू इंजॉय क्लासिक हिंदी लीगल ड्रामाज विद बिग बूमिंग इमोशंस, फैमिली स्टेक्स एंड स्टार ड्रिवन मोमेंट्स, देन इक्का इज गोना गिव यू इनफ टू चू ऑन. बस हो गया, मेहनत कर ली मैंने, ये अच्छी बातें हैं. इस फिल्म के बारे में जो नॉट सो अच्छी चीजें हैं, कमिंग अप इन जस्ट अ वेल. कीप इट लॉक टू द बिग बिंज विद मी सिड ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: मैंने है ना फैसला किया है।
1: करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता।
0: मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बता दो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ।
2: Less scrolling, more streaming. Let Sid take control of your weekend watch list. This is The Big Binge, only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. Stop searching. Start watching. Sid's got your weekend entertainment sorted on The Big Binge. Big 106.2, The Beat of Bollywood.

0: मैंने है ना फैसला किया है।
1: करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता।
0: मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ।
2: Less scrolling, more streaming. Let Sid take control of your weekend watch list. This is The Big Binge, only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

जम के मजा ले ऑफ योर वीकेंड एंड मजे का पार्ट है द बिग बिंज विद मी सिड। आज का सफर बस यहीं तक। आज का शो आपको कैसा लगा? यू कैन ऑलवेज यू नो लीव योर बुकेज एंड ब्रिक बैट्स ऑन आवर सोशल्स। वी आर 106.2 बिग एफएम, दैट्स आवर हैंडल ऑन इंस्टाग्राम। एंड इन केस देयर्स अ शो दैट यू वांट मी टू रिव्यू और इट कुड बी एन ओटीटी मूवी एज वेल, यू कैन ऑलवेज लीव योर रिकमेंडेशन एज वेल। कोई ऐसा आता है ना, बहुत सारे ऐसे शोज होते हैं, ओटीटी मूवीज होती हैं, जिनके बारे में आप सोच तो रहे हैं फॉर अ वाइल कि यार देखे नहीं देखे, मिक्स्ड रिव्यूज हैं। इफ यू वांट लीव दैट जिम्मेदारी ऑन मी, आई मेक श्योर दैट यू डोंट इवन वेस्ट अ सिंगल सेकंड ऑफ योर हार्ड अर्न टाइम over the weekends. If you got a recommendation for me to review, more than welcome. Leave a comment on our Insta. You can DM us, 106.2 Big FM. That's our handle on Instagram. I'm Sid, S-I-D-S-E-T-S, taking your leave. I'm going to see you a Monday morning. Don't forget the show that gets you up and running on a weekday from 7 to 11. It's called The Big Breakfast. Till then, enjoy the rest of your weekend. Bye-bye.

0: मैंने है ना फैसला किया है।
1: करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता।
0: मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ।
2: Less scrolling, more streaming. Let Sid take control of your weekend watch list. This is The Big Binge, only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. Are you ready?

0: your audio time machine. This is the Big Millennial Weekender, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Namaste.
2: Hola.
1: Assalamu alaikum.
3: Bonjour.
4: Ni hao.
3: Did you know? Now just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
5: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
6: दो या चार?
5: चार।
6: कब तक वापस लौटेगा?
5: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
6: चार या
5: पांच? पांच।
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड, प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7 to 9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। Y2K hits, indie gems, Bollywood gold, your kind of playlist. This is the Big Millennial Weekender, only on Big 106.2. The Big